0: How would you define yourself?
1: Well, I'm Shreyas.
0: And?
1: Just Shreyas.
2: बिछड़ जाएगी तो पता था मुझे, फिर भी क्यों रहा साथ मैं तेरे।

0: मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर आपने सफर शुरू कर दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए। रुकना और वापस जाना, ये वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए।
1: Tune in for a better life.

हाय, मेरा नाम शुभ बिश्नोई है। मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रोबस्ट वर्ल्ड। आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो तीन चीजों की अगर हम बात करें, पेड़, पानी और फार्मिंग के लिए लैंड। तो पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, बिना पानी के कोई जिंदगी नहीं। और फूड की बात करें तो बिना फार्मिंग के कोई फूड नहीं। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को नाला बनाया जा रहा है और खेतों पे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब बनाई जा रही हैं। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज हमारी जिंदगी के लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। बिना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ना आगे कभी जिंदगी होगी, ना ये कभी कोई जानने के लिए बचेगा कि ह्यूमन रेस या फिर एनिमल रेस करके कोई होता था। अगर हम बात भी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तो सिर्फ बातों तक या डिबेट्स तक ही सीमित रह जाती है। अगर हम बात करें कुओं की तो गाँव में जो कुएं होते थे उनको भर दिया जाता है और उनपे जमीन बना के उनपे कब्जा कर दिया जाता है। सारी नदियों में इतना कचरा, इतना इंडस्ट्री की फैक्ट्री का कुछ ना कुछ रसायन डाल के उनको हम नालों में कन्वर्ट कर देते हैं और खेतों की तो बात ही क्या करें, वहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा ही अलार्मिंग लगी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स निकाले और विलेजेस में वापस वेल्स या कुओं को वापस खोदना शुरू किया गया। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र हैं, जहां पे वापस से कुएं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वाटर टेबल कम हो रही है और लोगों को पानी की आगे फ्यूचर जनरेशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक और अगर हम बात करें कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज की तो वो माइनिंग की आती है। अब आप देखेंगे कि अगर कहीं पे भी माइनिंग होगी, चाहे वो कोल की हो चाहे क्रूड ऑयल की हो, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरियाज और कहीं पे भी रिजर्व एरियाज में होती है। तो ये एक और बात ये होगी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर माइनिंग होगी तो जंगल के पेड़ कटेंगे, जितनी भी हमारी माइनिंग के लिए डिगिंग की जाएगी, हमें जितनी भी हमारी मशीन्स लगी जाएंगी वो किसी ना किसी कोल या पेट्रोल या डीजल या किसी ना किसी चीज पे चल रही होगी, उसके तहत हमें और पोल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, बर्निंग ऑफ ऑयल होगा। और साथ ही साथ जब हम इस क्रूड ऑयल को माइनिंग करके कुछ भी कहीं भी ले जाएंगे, फैक्ट्रीज में उसे रिफाइन करने के लिए पोल्यूशन और होगा। और लास्ट में हम उस चीज को यूज करते हैं, चाहे पेट्रोल हो, हम हर दिन ट्रैफिक में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी को जाना होता है, वहां पे भी पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन सिर्फ एक व्यक्ति के वजह से नहीं होता है, पोल्यूशन हम सब कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनते हैं। अगर आप कहीं पे भी चाहे आप अपने उत्तराखंड के देहरादून की बात करें, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप देखेंगे लोगों को एक ही ऑफिस में जाना होता है लेकिन वो फोर व्हीलर से एक फोर व्हीलर में एक व्यक्ति बैठा होता है। तो उससे क्या पोल्यूशन बढ़ता नहीं है? पार्किंग की दिक्कत आती है, हर किसी को गर्मियों में छाए में पार्किंग और सर्दियों में उनकी गाड़ी गर्म रहे तो धूप में पार्किंग चाहिए होती है। नेचुरल रिसोर्सेज की बातें सिर्फ बात ना रहे, हम इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंट और बच्चों के फ्यूचर जनरेशन का इम्पोर्टेंट हमें दिमाग में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना है। हम सब सोचते हैं कि हमें अपने घर को बचाना है, घर को साफ रखना है, तो सबसे पहला घर अगर आपको मानना है तो आपका सबसे पहला घर ये धरती माता है, ये धरती है मदर नेचर जिसे आप कहते हैं। आपका घर सिर्फ चार दीवारी तक सिमटा हुआ नहीं है, ये सोचिए कि आप किस तरीके से नेचर को सेव कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कुछ छोड़ के जा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

आजकल हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बदल लेते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि अपनी पसंद का जीवन जीने के समान कोई जीवन नहीं। तो लाइफ अपने हिसाब से जिए, ना कि दूसरों के। ऐसी ही बातों के लिए सुनते रहिए वॉक टॉक रेडियो।

0: रेडियो।
1: कुछ बनना है तो अपने आप की तरह बनो, किसी और की तरह कोई ना कोई हर रोज यहाँ बन रहा है, तैयारी ही सफलता है।
0: Lockdown Radio, tune in for a better life.

यार कहाँ

0: रेडियो।
1: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। आई वॉज नेवर दिस कॉन्फिडेंट इन लाइफ। ओके, आई हैड अ फेज वेर आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड inferiority complex. That was because of, you know, जो outside circumstances होती हैं, जो तुम्हारे साथ experiences होते हैं, उसके basis पर तुम बहुत inferiority complex face करते हो. I was going through that bad phase, obviously. After, 2 years of going through that phase, I realized that, oh, where is that charm that was in me? You know, something is missing. I have stopped talking. I have stopped going out. Why? Then I understood that. And उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई. And then I traveled throughout that year. मैंने उस year में 10 जगहें इंडिया में travel करी. To sort of get back my confidence. And उसके बाद I understood that, जो भी outside circumstances थी, जो which were, pulling me down, they could no longer affect me after that 1 year. And then I started, getting back on the track, meeting people, doing some things जो मुझे अच्छी लगती थी, doing events, going out to different places and working with different people. And उनसे सीखा मैंने बहुत कुछ. मैंने 12th तक science पढ़ी, उसके बाद मैंने mass communication किया, उसके बाद मैंने events किया. ठीक है, तो I think I had enough backups को शन अवे करना. एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई एम मेंट टू सी द ऑपरेशंस ऑफ थिंग्स. सो अगर आज की डेट में आप पूछे मेरा बैकअप प्लान क्या है, आई टेक्निकली डोंट हैव अ बैकअप प्लान, बट इफ आई हैव टू डू समथिंग, आई नो आई कैन डू ऑपरेशंस वेरी वेल. ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी, ऑफ एनी जॉब, आई कैन डू दैट वेरी वेल, बिकॉज मैंने एक मास्टर ऑपरेशंस वाली फील्ड में काम किया हुआ है, जो इवेंट्स है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस देखने होते हैं. तो इफ आई कैन डू दिस, आई कैन सी द ऑपरेशंस ऑफ एनी प्लेस एंड एनी बिजनेस. हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है मेरे हिसाब से. जब व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तब मेरी मदर मेरे को खाना बनाना कहती थी कि सीखो एंड यू शुड नो हाउ टू कुक. मैं उन पे बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि मम्मी आप भाई को क्यों नहीं कहते, आप मुझे ही क्यों कहते हो कि खाना बनाना सीखो. उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हुआ करती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अवे फ्रॉम माय हाउस, आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग फूड फॉर योरसेल्फ. जितना तुम बाहर पैसा वेस्ट करते हो खाने पे, वो कितना बचता है इफ यू कुक योरसेल्फ. तुम कहीं पहाड़ों में कहीं अनकन्वेंशनल जगह पे चले जाओ, इफ यू हैव द बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट्स, तुम अपना पेट भर सकते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरीके से इंडिपेंडेंट होना एंड अपनी लाइफ को सस्टेन करना, खुद कमाना, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद के लिए खाना बनाना है. क्योंकि इतने सारे हम इंसिडेंट सुनते हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है एंड फीमेल्स को अपने गांव से बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा. मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि अगर मैं एक भी फीमेल की लाइफ ऑल्टर कर पाऊँ, वो मेरे लिए एक बहुत पुण्य का काम होगा. मेरी टीम में भी अगर आप देखें, देर आर 80-90% फीमेल्स इन माय टीम. और उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और हम फीमेल्स को सपोर्ट करें, अपलिफ्ट करें, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फीमेल रन ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं. उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेल रन. दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रिसर्च कि हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता है. हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नायलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं. हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा. देन वी ट्राइड टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स. हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए. विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट. हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है. सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं. इनफैक्ट हम नहीं, सारे ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है. ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है. ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा. आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ. Persistence over perfection is very important. अगर मैं आज persistent हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है. But then रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉक टॉक रेडियो.

0: पहेलियों।
1: मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। अपने आसपास बहुत लोग हो सकते हैं आपके जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, शायद वो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए या उसी सिचुएशन में उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिविटी, डराना यही मिल सकता है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो आप खुद हैं। खुद से बात करिए, खुद की सोच और खुद के निर्णय पे यकीन करिए, उस पे आगे बढ़िए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपके खुद के भरोसे से, जो आपका खुद पे होगा।
0: What?

कोविड ने हमें ये जरूर सिखाया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज गया कि आप अपने जड़ों को ना छोड़ें। कई लोग परमानेंटली दिल्ली, मुंबई और इवन इंटरनेशनल लेवल पे सेटल्ड हो गए थे और सबको लगता था हम सेटल्ड हो गए हैं, अब हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ यहाँ रहने वाली है, हम लोग अब अपने गाँव नहीं जाएंगे। बट कोविड ने एक ऐसा झटका दिया कि सारे के सारे लोग अपने गाँव को खोजने लगे, अपने जो होम टाउन्स थे वहाँ पे आने लगे। तो हमने जब ये छानी का कॉन्सेप्ट सोचा तो हमने कहा यार हम लोग ऐसा कुछ काम करेंगे उत्तराखंड में, देहरादून में, कि जो हमारा उत्तराखंड का यूथ है उसको फूड इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे गैथ के पराठे भी होते हैं, पनीर के, आलू के पराठे के अलावा गैथ भी एक चीज़ होती है हमारी, अगर कुमाऊनी एक बहुत फेमस डिश है भट की चटकानी, वो भी होती है, हमारे राइस रेड राइस भी होती है, वाइट राइस तो हम खाते हैं लेकिन बिना पानी का जो चावल होता है वो भी हमारे यहाँ होता है। स्वीट्स में हम देखें तो स्वीट्स में गुलाब जामुन के अलावा पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें, पहाड़ में अगर आप देखें अल्मोड़ा में जाएं तो अल्मोड़ा में चॉकलेट बहुत अच्छी फेमस है, वहाँ की बाल मिठाई, यहाँ की बाल मिठाई बहुत फेमस है, टीरी की सिंगोरी फेमस है, और सब जगह जो कॉमन पाया जाता है वो हमारी झंगोरे की खीर। तो हमने कहा एक फूड पे काम करते हैं, और फूड पे काम करने का मतलब ये था कि यूथ को या जो हमारे लोग हैं उनको पता चले हमारा फूड क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम किया कल्चर पे। तो कल्चर में क्या है, कल्चर एंड क्राफ्ट दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे आप देखेंगे हमने ये देखिए बड़ा सुंदर सा एक, इसे कहते हैं घेरड़ा, हमारे यहाँ ये घनसाली से ऊपर 11 गोविंदो है वहाँ से आया है, इसको बनाया है महिलाओं ने और ये घास काटने के लिए बनाया जाता है, बट इसके बहुत सारे और उपयोग भी हो सकते हैं, ये हमारा क्राफ्ट मानते हैं इसको। और ऐसी कई सारी चीज़ें आपने यहाँ देखी होंगी बनी हुई हैं जो क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारे क्राफ्ट एंड कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर आप देखें जो हमने ये झंडियाँ लगवाई हुई हैं, ये सारी झंडियाँ जो हैं ये जब हमारी शादियाँ होती थी पहले गाँव में तो इसी प्रकार की झंडियाँ लगती थी, तो हमारे बचपन को याद दिलाती है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी हमने चीज़ें रखी हुई पुरानी जो हमारे जो जनरेशन है, यूथ है, उनको अपने गांव से अटैच करे, ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। तो छानी का उद्देश्य यही था कि हम इमोशनली यूथ को या जो भी हमारे पहाड़ी समाज में रहने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव की तरफ अट्रैक्ट करें। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ छानी। बट इन जनरल मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आई थिंक हम कहीं पर भी अगर हैं, चाहे हम देहरादून हैं, दिल्ली हैं, अपनी प्रतिभा के अनुसार जॉब कर रहे हैं, बट जो भी हमारा सेक्टर है उसमें जॉब कर रहे हैं कि हो सकता है वो सेक्टर हमारे अपने होम टाउन में ना हो, विलेज में ना हो, बट हमें बहुत मजबूती से अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए। और अपने रूट्स को पकड़ने का केवल ये नहीं है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट बना दें, कोई आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दें, बट आप उस पर इन्वॉल्व होइए अपने फूड में, कल्चर में, क्राफ्ट में, अपने लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों, अपने पुराने जहां जिस टाउन में आप रहते थे उस टाउन के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, तो मतलब बहुत आनंद आएगा। तो यही मैसेज है कि आई थिंक अंगद की पाँव की तरह एक पाँव हमें अपने वर्किंग लोकेशंस पर रखना चाहिए जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, और एक हमें अपने रूट्स को बहुत मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। ये मैसेज आई थिंक कोविड ने भी हमें दिया है।

0: नमस्कार, मेरा नाम रमेश पेटवाल है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बड़ी फेमस जगह एक परियों का देश खैट पर्वत, वहाँ मेरा गांव है। छानी जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हम सब लोगों ने देखा है कि जो कोरोना काल था, कोविड का दौर था, तो उस समय सभी लोग हम वर्क फ्रॉम होम पे थे। तो मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो दौर था कि हम अपने सब अपने घरों में थे और कई सारे यूथ और कई सारे लोग जो बाहर काम करते थे, मतलब देश विदेश में काम करते थे, वो सब अपने गांव की तरफ चले गए थे। और गांव में जाने के बाद उनके थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहे थे कि क्यों ना अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। तो उसी दौरान जब हम साइकिलिंग करके इस जगह पर आते थे, हमारे यहाँ से मेरा जो देहरादून वाला घर है वो लगभग 9 किलोमीटर दूर है, तो जब हम यहाँ पर आते थे तो सोचते थे कि यार इस जगह का कैसे उपयोग किया जाए और कैसे इसको थोड़ा अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से हम इसको जोड़ पाएं। तो इसके लिए फिर काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस हम लोगों ने किया, मेरे कई सारे फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो हमारे विचार में ये, हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा लैक क्या कर रहा है यूथ के बीच में, तो वो कर रहा है कि हमें अपने कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने पहले तो डिसाइड किया कि हम कल्चर, क्राफ्ट एंड फूड पर थोड़ा काम करेंगे साइड बाई साइड। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो कभी आया कि गेटवे ऑफ देहरादून, हिमालय, बहुत सारे नाम आए। फिर सडनली एक डिस्कशन हो रहा था कि इसका नाम कुछ भावनात्मक नाम होना चाहिए इसका। तो मैंने प्रपोज किया अपनी टीम को कि हम इसका नाम छानी रखते हैं। तो छानी इज़ अ वर्ड, पहाड़ी वर्ड है, जिसको पौड़ी में अगर आप जाएंगे, पौड़ी गढ़वाल में, इसको छन्नी नाम से बोलते हैं। टिहरी में जाएंगे तो छैणू बोलते हैं, और इन जनरल अगर पूरे उत्तराखंड में छानी नाम इसको बोला जाता है। तो छानी क्या होता है कि हमारे पहाड़ियों के दो घर होते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो उस समय तो हम अपने नॉर्मल घर में रहते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे जो जानवर होते हैं या जो व्यक्ति उनके साथ रहते हैं, वो पहाड़ में ऊपर चले जाते हैं। वो टेम्परेरी हाउस होता है अप्रैल में, जून, जुलाई का, और उस टेम्परेरी हाउस में सारे वो अरेंजमेंट्स होते हैं जो एक घर में अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हमने इसका नाम भी छानी रखा। ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए टेम्परेरी हाउस है, किसी के लिए 4 घंटा, किसी के लिए 10 घंटा, कोई कोई यहाँ पर रुकते भी। हमने एक पठाल का छोटा सा घर भी बनाया हुआ है। तो यही एक थॉट प्रोसेस था कि छानी नाम क्यों रखा जाए। तो कई बहुत मेरा इमोशनल अटैचमेंट है छानी वर्ड से, मेरे भी नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि मैं खुद छानी में पैदा हुआ हूँ। तो और परियों के देश के नीचे की छानी थी वो, खैट पर्वत की, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और मैं अपने गांव से, अपने उस जगह से जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता हूँ। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने इस जगह का नाम छानी रखा।
1: जिन लोगों को दूसरे के सुनने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ते देखने में बाकी हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, तो आपसे मेरा यही कहना है कि सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो दोस्तों, क्योंकि यहां टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। Radio, tune in for a better life.

के रेगिस्तान में तू बारिश बन के आई है, भीग उठा है दिल मेरा, आंखें भी भर आई है, पार किए कई तेरे लिए मोहब्बत के इंतहा, तो जाना मौत से भी ज्यादा दर्द दीदी।

हाय गाइस, माय नेम इज काव्या और मैं अपने बारे में क्या कहूँ. आई थिंक मैं एक रूरल एंटरप्रेन्योर हूँ जो गांव में रहती हूँ. इनफैक्ट जंगल में रहती हूँ. बहुत पसंद करती हूँ भारत की कला और एक विजन है मेरा कि मैं आदिवासी जनजाति को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना चाहती हूँ ताकि उनका हेरिटेज, उनका क्राफ्ट बना रहे, और यही कोशिश है. सो दैट इज वॉट आई एम. एंड बाय एजुकेशन आई एम एन MBA ग्रेजुएट, और कभी नहीं सोचा था कि क्राफ्ट, ट्रैवल और इस तरह के गांव के इकोसिस्टम में काम कर पाऊंगी. आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स MBA बाय एजुकेशन, बट आई थिंक गॉड हैज बीन रियली ग्रेशियस. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान एंड नाउ आई लिव फ्रॉम अ फॉरेस्ट इन कोरापुट इन ओडिशा. दैट्स अबाउट मी. आई थिंक क्राफ्ट पोटली का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं ये कहूंगी 2009 के आसपास शुरू हुआ. हम सभी जब पहली जॉब में होते हैं, पहली सैलरी मिलती है, उसके बाद अपने पैशन खोजने लगते हैं. एंड तब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था, तो आई थिंक तब मेरा ये था कि मुझे एक ऐसा, एंड तब क्राफ्ट के भी बहुत मार्केट प्लेसेस या ऑनलाइन स्टोर्स नहीं थे, तो तब मेरा ये सपना था कि यू नो आई हैव टू क्रिएट दिस वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग हैंडमेड इन इंडिया, ऐसा मैं सोचती थी. तो क्राफ्ट है और वो सब एक पोटली है, क्योंकि मेरी दादी यूज टू ऑलवेज कैरी दिस पोटली एंड ऑलवेज शी वुड कैरी दिस मुरमुरे एंड सम नट्स. एंड मी बींग कमिंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माई फादर हैज 10 अदर ब्रदर्स सिस्टर्स, सो वी वर लॉट्स ऑफ किड्स यू नो इन राजस्थान. सो शी वुड ऑलवेज हैव दिस एंड शी वुड गिव समथिंग फ्रॉम हर पोटली टू किड्स. सो आई वॉज लाइक ओके क्राफ्ट पोटली, एंड बैक देन वो डोमेन मुझे मिल गया तो वो तब से रहा, बट उसके बारे में आई डिड नथिंग. फॉर 10 years आई केप्ट वर्किंग. एंड इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि पैंडमिक आया एंड आई थिंक हम सभी ने अपने आप के बारे में थोड़ा कुछ जाना. आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि जो मैं रूरल ट्रैवल कर रही थी फॉर माई फन विद द जॉब ऑन वीकेंड्स, वो रियली ट्रैवल नहीं था. मैं वापस आती थी अपने कम्फर्ट जोन में, जॉब करती थी, सैलरी लेती थी. इट वॉज पैंडमिक दैट मेड मी रियलाइज कि इफ आई हैव अ पैशन देन मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए कि वो पैशन रियली है भी या नहीं. कैन आई लास्ट दैट? सो आई टुक दिस मैसिव जर्नी, इट्स कॉल्ड काव्या ऑन क्वेस्ट. थोड़ा सा अच्छा उसका गूगल अट्रैक्शन है, आप देखिएगा. सो आई टुक दिस विद महिंद्रा ऑन 2nd October. द आइडिया ऑफ काव्या ऑन क्वेस्ट वॉज दैट नॉन स्टॉप आई विल बी ऑन द रोड्स कवरिंग विलेजेस ऑफ इंडिया एंड टेलिंग देयर स्टोरीज विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक, विदाउट फॉलिंग इल. आई थिंक आई वुड बी, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस. आई टुक 42 कोविड टेस्ट्स इन 6 months ऑफ टाइम. I started this journey on 2nd October 2020 after first pandemic and ended this journey in end of May 2021 and covered non-stop without staying in hotels or taking any guides, just covering crafts of India. Early in this journey I figured ki while I am from Rajasthan, which is like a craft hub or Kutch, I thought that the focus has to be to Eastern India, जहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चर है बट ज्यादा दिखाया नहीं जाता है. तो जब मैं वहां पे गई, I still remember, it was January 2021, I first entered the land of Odisha. And Odisha के हम जब भी बात करते हैं, we just know पुरी और भुवनेश्वर. I entered into a land where I saw James Cameron Avatar movie coming to life. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि ऐसे रोलिंग जंगल्स हैं, क्लाउड्स हैं एंड उसमें आदिवासी पीपल लिव फ्रीली. इट वॉज लाइक अवतार मूवी केम इन फ्रंट. आई हैड नेवर सीन, लाइक आई हैव बीन टू लद्दाख, आई हैव बीन टू ब्यूटिफुल प्लेसेस लाइक स्पीति, अंडमान, बट कोरापुट वॉज समथिंग एल्स फॉर मी. इट एंड वेन दैट जर्नी एंडेड इन जून, आई वॉज लाइक ईदर गो बैक टू माई जॉब इन गुड़गांव विच वॉज पेइंग मी वेल, or do something about your life. And I had 2-3 options. So I thought, okay, ya to West Bengal mein kahin pe jaate hain ya Chhattisgarh mein or Odisha. Now Odisha being very well connected by air, and generally since I also live solo, I felt it was a great opportunity for me to kind of relocate. So I relocated to Koraput and started with something really small. Craftpotly started its operations with a mere turmeric bar. That has now become a case study with the Tata Institute of Social Sciences in Bombay. It was a breakthrough product in itself. First 6 months of me living from August 21, when I moved to the village, till about, I would say, October or November 21, I would just go village to village, go to Adivasi Haats on weekly basis. घूमती रहती थी. उन लोगों को लगता था ये कौन सी लड़की है, क्या कर रही है. तब मैंने डिस्कवर किया कि ईस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा हल्दी उगता है विच इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड एंड इट डजंट गो आउट ऑफ
their own villages. So coming from the learning that I was having with my jobs, with the fashion brand that I was working before pandemic, we decided to turn that turmeric bar into a bathing bar. Now these people, jinke bhi hum baat kar rahe hain, wo log ek particularly vulnerable tribe ko belong karte hain, jo aaj bhi subah uth ke jungle jaate hain and fruits tod ke laate hain, uske basis pe ya thoda haldi ugate hain ya kuch coffee ugate hain ya sabzi ugate hain, usi pe hi zinda rehte hain. For them that is their lifestyle. So to make them learn how to make a bathing bar was a challenge in itself. We gathered about 62 women from 5 villages. All of them belong to the Kondha tribe, and they learned in 7 days how to mix the right proportions, the right percentage, usko dry kaise karna hai. Ye sab seekh liya, lekin beche kahan? That was the major question. So friends and family came into picture. I think every entrepreneur does that. I can say that now. So I sent these bars packed in brown paper, jo hum bachpan mein use karte the kitabe chadhane ke liye, usse bheja, and the reviews were fantabulous. It was something that I had not expected. People kept on repeating, my own relatives kept on asking, and that's where we thought, okay, let's increase the production. Thoda sa apna paisa dala, and we worked on the packaging a little bit. Then it was, I think, April 2022, very recently, that a Bangalore customer reached out to us that, can you make a lot more of this bar? Like, volume aap kar sakte ho? So we said, yes, now we have 14 women actively working, but we have 62 trained and we can train more people. So, yeah, and I think that was the pivot for Craft Potli. In April 22, we started supplying to one of the United Nations agency in Guatemala in Central America. And that is where volumes came in. When volumes came in, we got some confidence to add more products to Craft Potli and also define ourselves ki we will not be working in rural but Adivasi belts of the country. And that was like a long story to a short question, that Craft Potli ki shuruaat kaise hui. मैं शेयर करना चाहूंगी मेरा एंट्री इनटू विलेज, क्योंकि बहुत टाइम तक लोग ऐसा सोचते थे. अभी मुझे आई थिंक मैं अगस्त 21 में शिफ्ट हुई थी फुल टाइम इनटू अ फॉरेस्ट विलेज. तो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि ये लड़की मिट्टी के घर में रहती होगी लेकिन ऐसा नहीं है. बट बहुत टाइम लगा मुझे, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. जो भी आज हम काम कर रहे हैं बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू बिग स्टार्टअप्स. कई लोग मुझसे बहुत ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने एक साल में क्या किया. मैं देखती हूँ कि यू नो वन ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स पिवट कर जाते हैं, बट हम लोगों का ग्रोथ हैज बीन वेरी स्लो एंड माइंडफुल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस उन सभी लोगों के लिए जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखते हैं, कि आई थिंक स्लो ग्रोथ एंड एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया. तो मैं ये बताना चाहूंगी ये इंसिडेंट, कि मुझे 6 महीने लगे टू स्टार्ट माई फर्स्ट प्रोडक्ट. क्योंकि हो सकता है कि पहले आप किसी नोशन को लेके किसी गांव में आओ, वो चीज आपके लिए काम ही ना करे. पहले मैंने सोचा था कि मैं किसी ज्वेलरी पे काम करूंगी, बट वो नहीं वर्क किया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं टर्मरिक पे काम करूंगी, यू नो. एंड उसके बावजूद भी लोगों गांव में जनरली भरोसा धीरे धीरे आता है, और जब एक बार आ जाता है फिर वो लोग आपके लिए कुछ भी कर देंगे. तो फॉर मी दैट टुक अ लिटिल टाइम. मुझे 6 मंथ्स लगा टू ब्रेक दैट आइस बोलें या हम केमिस्ट्री बोलें. एंड जब वो 6 महीने का पीरियड पास हुआ एंड इट वेंट थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, चाहे आप टैटू कह लीजिए मेरी बॉडी पे, या आप जितने भी फेस्टिवल्स, या आप मेरा इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखेंगे, तो आई थिंक इट टुक मी अ वाइल. बट जब वो एक बार वो हो गया, देन इट वॉज अ इजी राइड फॉर मी. आई वुड से I think for me, traveling is like breathing. I literally breathed that. Abhi bhi. It was my birthday on 9 July, and I decided that living in a village, I am also lacking learning. Like, I keep seeing my village. It's like one keep seeing Gurgaon skies, or you keep seeing, let's say, the place where you live, the people you meet. Aapka ek routine ban jata hai. Mera bhi apna ek gaon mein routine hai. But mujhe laga ki I need some learning. So I literally took this self-funded trip to very different cities in India. Hum log jaate hain Ladakh, jaate hain Kashmir, jaate hain Srinagar, jaate hain. I decided to travel to Kota in Rajasthan and then Bhopal in Madhya Pradesh, because I realized that Bhopal has a good chunk of artists who belong to this Gondwana belt or the Gondi tribe
who are now pursuing or working on government projects. तो मैं generally उनसे कुछ सीखना चाहती थी. And कोटा में भी एक particular textile बनता है. And then I went to Nepal to just understand and prep my trip for Upper Mustang, where we are planning to document the different stone utensils. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप travel करते हो, it's like a live school. तो हम लोग books पढ़ते हैं. Like when I did my ग्रेजुएशन और एम बी आई रेड सो मेनी बुक्स. सो बुक्स एक तरफ है, बट दिस इज लाइक अ लाइव, लाइक इंस्टाग्राम लाइव. सो इट्स लाइक अ लाइव स्कूल वेर यू लर्न सो मेनी थिंग्स, फ्रॉम मैनेजमेंट टू एंगर मैनेजमेंट टू फ्रेंडशिप्स टू ईटिंग टू लाइफ, हाउ यू आर वॉट यू आर. सो आई थिंक आई एम वॉट आई एम बिकॉज ऑफ ट्रैवल, एंड आई थिंक दैट्स समथिंग.

0: ये है वॉक टॉक रेडियो।
1: दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी खूबियों को नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी कमियों को ही दर्शाएंगे। हो सकता है बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, लेकिन आपको सिर्फ ये सोचना है कि दुनिया का तो काम ही है आपको बार बार गिराना, और हमारा काम है ढीठ बनकर बार बार उठ खड़ा होना। इसलिए जब जब आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाए, तो याद करिए अपनी उन तमाम खूबियों को जिनको आप जानते हैं, और करते रहिए कोशिश लगातार, और बनते रहिए बेहतर हर बार।
0: Tune in for a better life.

0: अरे सबके बस की बात नहीं है, छोटे शहर की लड़की है, एक्टिंग में कहाँ जा सकती है। ये सब बातों को अनसुना करके एक लड़की सपनों की नगरी मुंबई जाती है। एमएस धोनी, रणबीर कपूर, अरमान मलिक सबके साथ काम कर जाती है। हाय, दिस इज आरजे गौतम फ्रॉम वॉक टॉक रेडियो। और यार, देहरादून की ना काफी चीजें फेमस हैं, जैसे कि मोमोज, FRI, यहाँ का घूमना, यहाँ का मौसम, यहाँ की एजुकेशन, शिक्षा। और अब इस लिस्ट में जुड़ गई है दून की दीक्षा। A very warm welcome to you, Diksha Chatpal, in Walk Talk Radio.
1: Thank you so much. Wow. It's a great feeling. I'm super excited to be here and have a great conversation with you guys.
0: सबसे पहले एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग कैसे और क्यों स्टार्ट करी आपने?
1: मुझे शुरू से ही था एक्चुअली, बचपन से, पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था और अंदर से मुझे वो आई नेवर हैड द करेज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट। मतलब आई लव वॉचिंग फिल्म जब मैं छोटी थी। आई यूज टू इमिटेट एक्ट्रेसेस ऑल्सो। आई यूज टू लव डांसिंग
0: एंड
1: या एंड माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ म्यूजिशियन एंड माई डैड ही सिंग्स, सो वो कहीं ना कहीं अंदर जीन्स में है। बट मुंबई आने से पहले आई यूज टू वर्क फॉर इंडिगो एयरलाइंस। आई यूज टू फ्लाई विद देम एज अ कैबिन क्रू। और मेरा प्रमोशन होने वाला था बट कुछ चीजें ऐसी हो गई वहां पे। आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद, तो मुझे ऐसा लगा कि नो, आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप एंड प्रोबेबली जस्ट यू नो फॉलो माई हार्ट नाउ। तो दिल वहां नहीं था, दिल कहीं और था, तो आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एंड आई मूव टू बॉम्बे।
0: काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने कोलैब किया है, काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने अभी तक काम किया है।
1: हाँ जी, मैंने कोको कोला के लिए काम किया है, मैंने फेसबुक के लिए और मूव और GSK, कैरेट लेन, मैकडॉवल्स नंबर वन सोडा, एंड मैंने म्यूजिक वीडियोज भी किए हैं। मैंने अंकुर तिवारी के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है फॉर MTV साउंड ट्रिपिन, एंड रिसेंटली मैंने एक और म्यूजिक वीडियो किया है जो टी सीरीज में आने वाला है। So yes and
0: तो ये फीलिंग कैसी होती है जब आपने सपना देखा था कि मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ करती हूँ, और अब जब आपकी वीडियो आती है, आपका एड आता है, आप बड़े पर्दे पे आते हैं और घर वाले देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है?
1: आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो वो फीलिंग ही अलग ही होती है। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बिकॉज दैट इज वॉट आई लव टू डू। आई मीन कैमरा, आई लव कैमरा, आई लव बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग विच आई लिटरली कैन नॉट एक्सप्रेस। इट्स लवली।
0: टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन, तो आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक?
1: So I have not really gone to college. I don't have a degree. I have a diploma in acting and production. I was in Noida Film City after my school. After my schooling, I told my family that मुझे बॉम्बे आना है, but लेकिन उन्होंने मुझे आने नहीं दिया बॉम्बे। मैं बहुत ज्यादा यंग थी उस टाइम एंड my dad never like took me seriously कि आ रहे यार कहाँ इतनी छोटी हो अभी तुम बॉम्बे जाओगी, ऑडिशंस वगैरह दोगी, यू नो नहीं जाना। तो उसके बाद मैं बहुत ज्यादा ना रिबेलियस हो गई थी कि नहीं यार, फिर मुझे भेजा ही क्यों आपने, यू नो नोएडा क्यों भेजा आपने मुझे ये कोर्स करने के लिए। तो आज लाइक अब तो मुझे निकलना ही है घर से। तो मैंने रैंडमली फिर जॉब अप्लाई कर दिया इंडिगो में, एंड आई गॉट थ्रू एंड आई गॉट द जॉब। एंड मैं भूल गई अपना यू नो एक्टिंग वैक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आई स्टार्टेड इंजॉइंग माई जॉब। बट
0: वो कहते हैं ना कि जहाँ पहुंचना होता है इंसान को,
1: हाँ,
0: तो कैसे भी पहुंच जाता है।
1: एग्जैक्टली, आई थिंक वो चीज मैं समझ चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करके ना वो लाइफ इज लाइक अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं वो आपको पहुंचा ही देती है जहाँ पे एक्चुअली आपको पहुंचना होता है। सो इट इज लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो चीजें आप प्लान करके चलते हो ना लाइफ में, वो कभी नहीं होती। वो कभी नहीं होती है। सो आई फील दैट इट्स बेटर नॉट टू प्लान थिंग्स। आई डोंट नो, इट्स जस्ट Let life happen to you.
0: Walk Talk Radio. So you work in Bombay, but you are a Dunite girl. So quickly answer Bombay and or Dehradun and why?
1: Always, always, always Dehradun. I think मैंने काफी travel किया है और travel करके मुझे ये पता चला कि देहरादून जैसी city इस दुनिया में नहीं है। आई थिंक देहरादून इज एन इमोशन एंड हर चीज मैं देहरादून की मिस करती हूँ जब भी मैं बॉम्बे में रहती हूँ. देयर इज नथिंग व्हिच आई डू नॉट मिस अबाउट देहरादून.
0: जैसे क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करती हैं देहरादून की?
1: फर्स्ट इज मोमोज. आई लव मोमोज. मतलब एक तो बॉम्बे का खाना इतना खास है, बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस हैं तो यार हमें चाहिए थोड़ा स्पाइसी और बटर चिकन प्रॉपरली, यू नो, मोमोज की चटनी ये वो सब कुछ. तो आई मिस द फूड, आई मिस द वेदर, आई मिस द पीपल फ्रॉम देहरादून, बिकॉज यहाँ पे वो सिंप्लिसिटी है लोगों के अंदर अभी भी. अभी भी लोग इतने ग्राउंडेड हैं, मतलब इट्स जस्ट आई मिस दैट थिंग अ लॉट फ्रॉम देहरादून.
0: और आपको क्या लगता है एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ मैनेज करना?
1: आई थिंक इट इज डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब वो आपकी वायरिंग पे डिपेंड करता है, हाउ यू बेसिकली परसीव थिंग्स. बट बॉम्बे में सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट है, सब लोग भाग रहे हैं, लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड थिंग्स. तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू जस्ट लूज इट, आप खो देते हो खुद को भी. हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ हाउ यू परसीव थिंग्स एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ all these things that you need to keep your personal life separate and your professional life separate, because har cheez aapke kaam ke aas pass revolve nahi karti. Everything doesn't revolve around your work. You have a personal life also which is separate and just enjoy it. I mean, theek hai.
0: Walk down radio. So what is that feeling jab aap wapas aati hai Mumbai se Bombay se kaam karke Dehradun aa rahi hoti hai, to kaisa lagta hai aapko?
1: मतलब आई थिंक दैट इज वन फीलिंग विच आई लिटरली लिव फॉर. जो मैं ये चीजें जो मैं कर रही हूँ वो मैं इसी फीलिंग के लिए कर रही हूँ, इज दैट कि जब मैं शूट के बाद जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ या मैं अपने बॉम्बे वाले घर या यहाँ पे आ रही होती हूँ, आई थिंक दैट फीलिंग इज समथिंग विच इज, मतलब एक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है कि यार आज कुछ किया है, आज मैंने वो किया है जिससे मैं प्यार करती हूँ. नो, लाइक आई लव वॉट आई डू राइट नाउ एंड आई एम गोइंग बैक होम डूइंग दैट. तो that वो फीलिंग के लिए आई लिव फॉर दैट फीलिंग. सो आई थिंक वही है.
0: और बहुत कम लोग होते हैं जो ना अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो उसी में रह जाते हैं, यार काश मैं ये बन जाता या काश मैं वो कर लेता.
1: एग्जैक्टली.
0: लेकिन आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है, रणबीर कपूर, अरमान मलिक, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, जिनको आपने पहले कभी टीवी पे देखा है या सुना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
1: वो एक्सपीरियंस मतलब जब मुझे व्हेन आई गेट दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो बहुत मुझे ऐसा ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं हुई कि यार आज मैं ओह माय गॉड इनके साथ काम कर रही हूँ उनके साथ. बट द एक्सपीरियंस द फीलिंग आपको वो तभी आती है जब आप सेट पे उनके साथ होते हो. देन यू गेट दैट कि यार ओके I'm actually working for these. It is happening. I'm actually working with these people. But when I worked with MS Dhoni, I did this ad. Oh my God, I think he's so sweet.
0: Captain Cool.
1: Very like humble and grounded, and he's talking to me. He's like, even my wife is also from Dehradun. So I was like, I'm also from Dehradun. And he's just like, तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ यार, लाइक सच अ.
0: He's MS Dhoni. और MS Dhoni होके भी इतना काम हो.
1: Exactly.
0: ट्रैवलिंग की बात भी करी, आप अपने काम के सिलसिले से ट्रैवल करती हैं और जब इंडिगो में थी तब भी ट्रैवलिंग होती थी, तो व्हेन यू वर्क इन सच अ फील्ड, तो हाउ डज ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन?
1: इट डज इवॉल्व यू. मुझे ऐसा लगता है कि काम के अलावा आप हम सबको ट्रैवल करना चाहिए. मतलब आप जितना भी कमा रहे हो उससे थोड़ा सा आप अपना 20-30% पैसा अलग करके वी ऑल शुड ट्रैवल. मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विच विल इवॉल्व यू इनटू अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. सो सर्टेन थिंग्स जो मैंने लाइफ में अडेप्ट करी है वो ट्रैवलिंग से ही करी है. आप जिस तरीके के लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर्स देखते हो, इट्स सो डाइवर्स आउट देयर. सो या इट विल चेंज यू समवेयर.
0: मैंने कहीं पे पढ़ा था आपने एक गाना लिखा भी, आप लिखती भी हैं.
1: हाँ.
0: तो उस गाने की अगर एक दो लाइन अगर आप गा दें बता ही दें मतलब की.
1: हाँ हाँ, मैंने गाने लिखे हैं एक्चुअली. देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु इज वन ऑफ द रेनाउंड लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री, तो उनके साथ मैंने काम किया है. बट एक गाना है जिसमें मुझे एक्चुअली एज अ लिरिसिस्ट मेरा नाम आया था, which is called Killer Haseena for T-Series, and this one was for Arjun Kanungu and Tulsi Kumar. So me and the other person Vayu, hum dono ne saath mein ye gana likha tha. So not just this, I do write stories also. I am right now learning copywriting and content writing also.
2: Walk Talk Radio,
1: so basically I am going to be working on advertising and brand campaigns. So I just want to, as an artist, I want to explore.
0: Creativity honi chahiye.
1: Haan, matlab aur jagah bhi mujhe explore karna hai. So is wajah se abhi main copywriting mein bhi ghus rahi hu. So basically I'll be a copywriter, certified copywriter. नेक्स्ट मंथ, तो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा कोर्स खत्म हो रहा है.
0: अच्छा,
1: या
0: वॉक टॉक रेडियो. किलर हसीना की कोई हुक लाइन या दो लाइंस, कुछ भी.
1: किलर हसीना हसीना आ जान ले ले, किलर हसीना.
0: तो ये डांस और पेपी टाइप का सॉन्ग होगा.
1: इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड नंबर. मतलब ये तो बहुत मजा भी आया था एक्चुअली इसको लिखने में, बट प्रॉपर बॉलीवुड नंबर है ये.
0: तो ये लिखने की जो जर्नी है, ये भी बहुत पहले से ही है या अभी साथ साथ आप लिखने लगे हैं?
1: ये बहुत पहले से है एक्चुअली, बचपन से है, पर लेकिन अब मैंने इस पे प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है. एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग विच इज कि कैमरे के पीछे भी क्या होता है, मतलब मुझे उस पर भी काम करना है. दैट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो लाइक एक एड को. मैंने एड्स वैसे बहुत सारे किए हुए हैं एज एन एक्टर, बट नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट एड्स ऑल्सो.
0: बनता कैसे है,
1: बनता कैसे है, लिखते कैसे हैं, यू नो प्रॉब्ली आई वॉन्ट टू डायरेक्ट ऑल्सो वन डे एड्स और फिल्म व्हाटसोएवर. सो दैट्स वाई आई एम गेटिंग इन टू कॉन्टेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग.
0: बहुत ही अच्छी बात है कि सीखने की चाह हर चीज में है. किसी एक चीज को आप स्टिक नहीं कर रही हैं.

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloths जो कि jute है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से खुद structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.
1: वॉक टॉक रेडियो.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस, मैं बोलती हूँ परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बींग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट आएंगे परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

0: Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.
1: Walk Talk Radio.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहां लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारा हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपकी आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छापोगे, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: भेजे के तार गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आपको टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंट।

0: में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
1: वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है, और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है, बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे, जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

0: क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
1: वक्त

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की भी वो। अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को, जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए, फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं, जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हों, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गया। लेकिन गिरने के बाद एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। दोस्त ने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, मेरे को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप भी सीखे। सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walked Up Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walked Up Radio.

खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब। यहाँ बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से, वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया, एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% इफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देशकाल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% इफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% इफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हम हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है। खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज

0: तैयारी करी थी आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख, वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
1: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स में सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloths जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा। then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures, हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए, vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flags हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनालिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट। वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। Persistence over perfection is very important. अगर मैं आज persistent हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है, but then रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहां लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपकी आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप होते हैं, उनकी सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो, खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: भेजे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भागदौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। देखिए, एक उम्र के बाद मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा। कभी ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाएं और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है, बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

0: क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
1: वक्त

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं. आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, में भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. तो मेरे को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इंप्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, तो वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया है ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती। विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% इफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% इफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% इफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी आज से लगभग 20 साल पहले मेरे को हंसी आती है सोचकर, उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: पहेलियों।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख, वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: रेडियो।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
0: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भोकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा

0: थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ, परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: Walk Talk Radio.

0: Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theatre artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, हमें उसे recognize करना ही होगा क्योंकि अगर हम उसे recognize नहीं करेंगे then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But क्यों ना इसका point of view हम change करें? शायद वो tests हैं जो plant किए गए हैं भगवान के द्वारा so that हम grow करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ इट, देन यू नीड टू फॉलो इट. एंड डोंट एवर लिसन टू द नेसेयर्स. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो already तुमसे नीचे हैं. So ladies and gentlemen, you have to trust me when I say that take your first step in faith. You don't need to see the entire staircase. Just take that first step and the glory is going to be yours forever.
1: Walk Talk Radio.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहां लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइन टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपकी आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गाँव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छापोगे, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: भेजे के तार गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आपको टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: Walk Talk Radio.

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे, जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

0: क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
1: वक्त

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग। मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक। ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की। किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मैं भी वो। अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो। तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए, फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं, जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे

मार्केट खराब हो गया तो मेरे को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ। लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ चार कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे दो कदम चार कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सदरो वॉक टॉक रेडियो ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: वॉक टॉक रेडियो, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: वॉक टॉक रेडियो।

खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, तो वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहे जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिस

नहीं, उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहाँ पर कोई लाइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं है। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% इफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% इफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% इफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है। खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloth जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flags हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनालिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.
1: वॉक टॉक रेडियो.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, रादर देन बींग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम, ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहां लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म, भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपकी आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो गए, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: भेजे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

देखिए, एक उम्र के बाद मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है, बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक डाउन।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

0: क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
1: वक्ता

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इंप्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है. लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सुंदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio. Walk Talk Radio.

खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, तो वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को, लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिले तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली, वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले, आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे

बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता ना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल

देखा, ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं, उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं, उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो, जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% इफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% इफर्ट कर रहे हो, और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट

0: 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा.

0: है वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ, परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ रादर देन बीइंग परफेक्ट, आई थिंक हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है, बट देन यू नो रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: Walk Talk Radio.

0: Radio.
1: Well, hello everyone. My name is Radha Bhardwaj and I'm an engineer, theater artist, model, writer and a working actor in Mumbai. Aap sun rahe hain Walk Talk Radio. And today we'll be talking about following our dreams. Friends, God has put a unique dream, a motive, a goal in everyone's heart. And that dream is said to be our life purpose on earth. So certainly, hame use recognize karna hi hoga. Kyunki agar hum use recognize nahi karenge, then we'll be mere puppets in helping other people fulfilling their dreams. Now I know that there are many factors that might come in the way of following our dreams. But kyun na iska point of view hum change kare? Shayad wo tests hain जो प्लांट किए गए हैं भगवान के द्वारा सो दैट हम ग्रो करें और पहुंच पाए अपने लाइफ पर्पस तक. दोस्तों, जोएल ऑस्टीन कहकर गए हैं दैट गॉड वुड नॉट हैव पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट इफ ही हैड नॉट ऑलरेडी गिवन यू एवरीथिंग यू नीड टू फुलफिल इट. सो इफ यू हैव अ ड्रीम इन योर हार्ट, यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स.

because of it, then you need to follow it. And don't ever listen to the naysayers. The people who say that you cannot do it are those people who couldn't do it themselves. वो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे नीचे हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव टू ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट टेक योर फर्स्ट स्टेप इन फेथ. यू डोंट नीड टू सी द एंटायर स्टेयरकेस, जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड द ग्लोरी इज गोइंग टू बी योर्स फॉरएवर.

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चले कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपकी आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो रहे हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो, खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: भेजे के तार गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम

0: फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
1: Walk Talk Radio.

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपने उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना

बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना है, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है तो वो दो

रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है। ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे दो कदम चार कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सदर वॉक टॉक रेडियो ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

के बीच के अंतर की। एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, कि हमारा जो आज है ये भी एक दिन कल हो जाएगा, और हमारा आने वाला जो कल है वो भी किसी दिन आज होगा, और वो भी गुजरा हुआ कल हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई मीन यही तो है पूरा प्रोसेस। हर किसी ने लाइफ में ना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, गोल सेट कर रखा है। हमको लगता है कि हमारी मंजिल, एक तो ना मुझे मंजिल वाली चीजें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि इस दुनिया में ना ट्रस्ट मी मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। मैं दुनिया से बिल्कुल ही उलट बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं प्रूव करूंगा मेरी बात को कि मंजिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये एक इमेजिनरी दुनिया है जो हमने सोच ली है कि मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। मुकाम बोल सकते हो आप, लेकिन मंजिल नहीं है। मंजिल का मतलब ये हुआ कि अब आपका सफर हो गया है खत्म, आप पहुंच गए आपको जहां जाना था। सपोज आपको दूध लेने के लिए जाना है और आपको दुकान तक जाना है, आपकी दुकान है आपकी मंजिल, उसके बाद खत्म हो गया, आगे का प्रोसेस चलिए ठीक है इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस से आपको घर पहुंचना है, घर आपकी मंजिल है, आप घर पहुंच गए, आप घर रुक जाइए, सफर का अंत हो गया, ये है मंजिल। तो क्या हमारी जिंदगी में सच में कोई मंजिल है? नहीं, मुकाम बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मुकाम किसी भी चीज का एंड पॉइंट नहीं है। मुकाम के साथ में भी जर्नी तो कंटिन्यू है। मंजिल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर किसी की जिंदगी

एक्सपेक्टेशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके, और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम

बनाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।
0: वॉक टॉक रेडियो।

रेडियो। दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला।

ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आपको टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में रह के करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूँ, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो, तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमें

0: क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
1: वॉक टॉक रेडियो।

0: हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं. हमने reusable cloth जो कि जूट है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flags हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनालिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट.
1: वॉक टॉक रेडियो.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ rather than being perfect, I think results आएंगे after some time। मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent। और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है। But then रोज थोड़ा थोड़ा करना is very important। Walk Talk Radio।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहां लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था।

था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना भीष्म पितामह बिना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ इस तरफ लेकर आई है। डेस्टिनी इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं? तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपकी आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो रहे हैं, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: भेजे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। देखिए, एक उम्र के बाद मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो,

आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीज़ें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपनी उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी ना जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, ना जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों, 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे, जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

0: क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
1: वक्त

किया और दोनों नहीं पैसे कमाए। फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया, दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ। कहानी पे लौटते हैं। जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा। लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया। वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए। दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया। तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है। कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया, मेरे को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया। तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से। जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ, लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता। तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया। तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा। सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा। जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो, ऐसा हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है, लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है। सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना। सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं। सीखते रहना। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है, ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं, क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। आज उससे सीखने का वक्त है। जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे। सदरो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है। मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, तो वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को, लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है। और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे, वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार

0: वॉक टॉक दोनों ही जरूरी हैं, अपनों के साथ भी और सपनों के साथ भी। वॉक टॉक रेडियो,
1: वॉक टॉक रेडियो,
2: वॉक टॉक, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
3: दोस्तों, हर दिन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा काम करूं, कौन सा छोड़ दूं। करियर में आगे बढ़ते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि एक साथ हमें दो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और तब ये मिक्स इमोशंस वाली सिचुएशन बन जाती है जिसकी

ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता ना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसके इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% इफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देशकाल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% इफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट देती हैं, आपको पैसे देती हैं। तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% इफर्ट कर रहे हो और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है। खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर, उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था। मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
0: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के संग।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: रेडियो।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस

0: डेंट कॉन्फिडेंस में रहकर करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
1: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे. हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर. अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स में सेम चीजें हो सकती हैं. सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है. तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम. देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग. सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं. देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग. तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो. इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड. हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर. एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटिफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स. देन वी ट्राइड टू यूज जूट instead of you know cloth and synthetic cloth and nylons जो environment को harm करते हैं, हमने reusable cloth जो कि jute है वो maximum जगहों पे use करा. Then we tried to avoid using iron structures as much as possible and we tried using more of bamboo structures. हमने bamboo and लकड़ी से कुछ structures create किए. Vinyl को ना use करके हमने for welcome boards and flex हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स. तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनालिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट. वॉक टॉक रेडियो.

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, आई कॉल दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। परसिस्टेंस ओवर परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आज परसिस्टेंट हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, रादर देन बींग परफेक्ट, आई थिंक रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर सम टाइम। मुझे पूरा भरोसा रहता है इफ आई एम परसिस्टेंट। और परफेक्शन को अगर हम, ऑब्वियसली कई डेज पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आता है, कई डेज पे थोड़ा कम अच्छा आउटपुट आता है, कई डेज हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम ह्यूमंस है, सबके साथ होता है। बट देन रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहाँ लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। तो आप बोलते नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है, मैं भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपकी आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो गए, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।

0: भेजे के तार हो गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो, तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: वॉक टॉक रेडियो।

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भागदौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद, मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम

टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपनी उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो ये काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है, बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों 1000 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे। वाह,

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन

फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. ये वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, में भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशन, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. तो मेरे को बहुत लॉस हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है. लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सदरो वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

खुद के लिए जीने वाली दुनिया में अगर जो कोई किसी और के बारे में कुछ सोच और कर रहा है ना, तो वही असली हीरो है। और ऐसे ही हीरोज की बात करते हैं हम इस शो में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। मैं हूं समर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से स्कूल के क्लर्क अंकित अनिल भार्गव की, जिन्होंने स्टार्ट किया है करियर लैब, जहां बच्चों को गाइड किया जाता है कि उनको कौन सी स्ट्रीम का चुनाव करना है, कौन सी स्ट्रीम उनके लिए बनी है, फ्यूचर में वो क्या बन सकते हैं। 2012 में अंकित के पिताजी के न रहने के बाद सरकारी नियम से उनकी जगह अंकित को उसी सरकारी स्कूल में क्लर्क की जॉब ऑफर की गई। जॉब की पोजीशन भले ही छोटी थी, लेकिन जो विचार अंकित के दिमाग में चल रहे थे वो बड़े थे। MNIT पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके। क्योंकि स्पेशली 12th के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है, और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है, और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, न जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही, वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया, वो आदमी अपने बच्चे को लेके उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम, किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास, किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% इफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देशकाल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो

0: फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो, और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा, और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू, यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए, और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं, और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं, आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर, अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू, यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर। उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था। एंड इट ओपन माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूँ गिरेंद्र भारती। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर। ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।

0: रेडियो।
1: हारना कभी किसी के खून में नहीं होता, कमी जुनून में होती है। बस अपने अंदर का जुनून मत खोना।

0: परिंदों को घोंसले में रहकर खाना पानी और जिंदगी तो मिल जाती है, पर पहचान नहीं। अपनी पहचान बनाने के लिए पंख फैलाने ही पड़ते हैं। फैलाइए अपने इरादों के पंख। वॉक टॉक रेडियो के साथ।
1: दोस्तों, जब तक आप समुद्र का किनारा छोड़ने का साहस नहीं करोगे, तब तक समुद्र को पार नहीं कर पाओगे। लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।

0: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
1: वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। हमारी इवेंट कंपनी से इफ अ क्वेरी इज कमिंग टू अस, हम लोग पहले समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर। अगर एक वेडिंग क्वेरी है, अगर एक कपल है जो अपनी वेडिंग प्लान करना चाहता है, हम उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द प्रिंसिपल कि सारे वेडिंग्स एंड सारे इवेंट्स पे सेम चीजें हो सकती हैं। सबकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, सबका आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे हम भी फंक्शन करते हैं कि नो टू वेडिंग्स कैन बी द सेम, देयर विल बी अ डिफरेंट हार्ट बीट ऑफ एवरी फंक्शन एंड वेडिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट हाउ वी फंक्शन, हम उनके पॉइंट्स उठा के कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पे अपनी टीम की रिसर्च करके हम कुछ डिफरेंट क्यूरेट करने का ट्राई करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो जिसमें कि यू नो हम उनके इनपुट्स लिए, हमने अपने इनपुट्स दिए, देन हमने क्यूमुलेटिव तरीके से कुछ अच्छा क्रिएट करा एंड कुछ डिफरेंट क्रिएट करा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। हमारा एक कपल था रिसेंटली जो बहुत वोकल थे अबाउट एनवायरमेंट, सेविंग द एनवायरमेंट, नॉट यूजिंग प्लास्टिक, मिनिमम वेस्टेज, रिड्यूसिंग द वेस्टेज एट द वेडिंग। तो हमने उनकी वेडिंग को किस तरीके से क्यूरेट किया, हमारे पेज पे भी वो डली हुई है अगर किसी को देखनी हो तो। इट वॉज अ सस्टेनेबल वेडिंग दैट वी क्यूरेटेड। हमने उनकी वेडिंग पे प्लास्टिक बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं यूज किए, हमने ग्लास जार्स रखे विद पेपर कप्स, हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रेश फ्लावर्स इन बल्क जो दिल्ली से आता है, हम वी ट्राइड टू यूज लोकल फ्लावर्स एंड लोकल ग्रासेस फॉर देयर डेकोर। एंड अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ कमी है कहीं पे, वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यूजिंग ग्रासेस एंड लोकल फ्लावर्स। देन वी ट्राइड टू यूज जूट इंस्टेड ऑफ यू नो क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ एंड नाइलॉन्स जो एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, हमने रीयूजेबल क्लॉथ जो कि जूट है वो मैक्सिमम जगहों पे यूज करा। देन वी ट्राइड टू अवॉइड यूजिंग आयरन स्ट्रक्चर्स एज मच एज पॉसिबल एंड वी ट्राइड यूजिंग मोर ऑफ बैम्बू स्ट्रक्चर्स, हमने बैम्बू एंड लकड़ी से कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। विनाइल को ना यूज करके हमने फॉर वेलकम बोर्ड्स एंड फ्लेक्स हमने बनाना लीव्स यूज किए, हमने जूट यूज किया इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। तो इस तरीके से हमने उनकी वेडिंग को जस्टिस करने का ट्राई किया। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी टेक इनपुट्स फ्रॉम द कपल्स पर्सनैलिटी एंड ट्राई टू क्यूरेट समथिंग आउट ऑफ इट। वॉक टॉक रेडियो।

हाय, आई एम अनुकृति एंड आप सुन रहे हैं मुझे वॉक टॉक रेडियो पे। देखिए, आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आपने बोला, उसका जमाना है। सो सोशल मीडिया इज ऑब्वियसली वन मेन थिंग जो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं, सारे ही ब्रांड्स जिनकी ऑडियंस मिलेनियल्स एंड जेन जी है, वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो हमारी इंडस्ट्री है इवेंट मैनेजमेंट की, वो एक बहुत ही वर्ड ऑफ माउथ काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका वर्ड ऑफ माउथ से कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगता है। ठीक है, I call this community transmission. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं वो कुछ टाइम के बाद जाके वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगेगा, एंड तब तो भौकाल मच जाएगा। आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा एवरी डे जाके आपको एक गोल तक पहुंचाता है, जो कि परसिस्टेंस मैं बोलती हूँ। Persistence over perfection is very important. अगर मैं आज persistent हूँ, रोज कुछ कुछ करती हूँ, rather than being perfect, I think results आएंगे after some time. मुझे पूरा भरोसा रहता है if I am persistent. और perfection को अगर हम obviously कई days पे हमारा perfect output आता है, कई days पे थोड़ा कम अच्छा output आता है, कई days हमारा मन नहीं करता, ठंड है बाहर, ये हम humans है, सबके साथ होता है, but then रोज थोड़ा थोड़ा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक टॉक रेडियो।

दोस्तों, आपने एक और वर्ड अपने जिंदगी में कई बार सुना होगा, डेस्टिनी। डेस्टिनी में मेरी था कि मेरे नहीं था, या डेस्टिनी ने मुझे यहां लेकर आया है। आपके सामने ये वर्ड बहुत बार आया होगा। हम कई बार बोलते हैं कि कर्म भाग्य मुझे अगर अमीर बनाना है तो बनाएगा, आप मेहनत नहीं करते तो कभी सफल नहीं होगे। ताबूत नहीं, अगर मेरी मुझे लेके जाना है तो करोगे, वो भी सही नहीं है। इसलिए कर्म करते रहो, कर्म करना जरूरी है। डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कहूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने मुझे एक्टर बना दिया। आई वॉज, जिसे हम कहते डेस्टाइंड टू बिकम एन एक्टर, आई वॉज, मुझे एक्टर बनना था, मुझे भीष्म पितामह बनना था, आशीर्वाद बांटना था, मुझे शक्तिमान बनना था, बच्चों को ज्ञान बांटना था, तो मैं शक्तिमान भी बना, भीष्म पितामह भी बना। मेरी डेस्टिनी मुझे अपनी तरफ, इस तरफ लेकर आई है डेस्टिनी। इसीलिए क्या हम ये मान के चलें कि हम जो कुछ भी होते हैं वो विधाता की वजह से होते हैं, तो फिर आप कर्म करना छोड़ दोगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसने भगवान ने कहा कर्म करो साहब, कर्म मत छोड़ो। आप बोलो कि मुझे सब कुछ मैं नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब आप करोगे। तो डेस्टिनी डेफिनेटली होती है, डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है। मैं भी कई बार करता हूं, मेरी डेस्टिनी में एक्टर बनना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं डेस्टिनी की वजह से एक्टर बन गया, जरूरी नहीं। मैंने पापड़ बेले होंगे, मैंने मेहनत की होगी, मैंने कॉन्सेंट्रेट किया होगा, मैं पढ़ता भी रहा बीच बीच में। ये नहीं कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो मुझे क्या फायदा है बीएससी करने का, क्या फायदा है एलएलबी करने का। नहीं साहब, अगर मैं ये मान के बैठा कि मुझे डेस्टिनी ने, अगर मुझे कोई एक मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर, जो हमारे हाथ पड़ता है, जिसको हम दिखाते हैं सर मैं क्या करूंगा, मैं मिनिस्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लोग लाइन लगाते हैं उनके सामने जाके, और वो बताता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो है वो सीएम बनने वाले हो। अब वो आदमी काम वाम सब करना छोड़ देगा। अरे बनना ही तो है ही ना, फिर क्या करना है, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपके सामने इस तरह से इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि मुझे डेस्टिनी ने भीष्म पितामह बना दिया, शक्तिमान बना दिया है। मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली हर विषय पे कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूं। मेरी ये एबिलिटी, मेरे लोगों से व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए नहीं बनी है कि मैं शक्तिमान और भीष्म पितामह बना, वो इसलिए बनी है कि मैंने एसएससी भी किए, बीएससी भी किए, एलएलबी भी किए। इसलिए मैं हर एक्टर को कहता हूं, एजुकेशन मत छोड़ो। जिंदगी में काम आएगा तो सिर्फ एजुकेशन काम आएगा, ये सिर्फ ये जानकार वो जानकार ये काम नहीं आएगा। आप जितना, तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। हमारा देश सफर भी अगर कर रहा है तो अनएजुकेशन की वजह से है। आज भी गांव में लोग नहीं पढ़ते, अंगूठा छाप हो गए, उनके सोचने की शक्ति लिमिटेड हो जाती है, इसका फायदा उठाते हैं आसपास के लोग। इसलिए पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। डेस्टिनी आपको बनाएगी जो आपको बनाना है। मुझे इंजीनियर नहीं बनने दिया उन्होंने, मुझे लॉयर नहीं बनने दिया, मैंने एलएलबी किया, मुझे एक्टर बनाया। किसने बनाया? डेस्टिनी ने बनाया। और फिर मैंने अपना पूरा सहयोग दिया उस एक्टिंग के प्रोफेशन को परफेक्टली करने का, मेहनत मैंने की, तब जाकर आज मैं यहां पहुंचा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। सो लेट डेस्टिनी वर्क ऑन यू।

सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समाज को नहीं खुद को प्रूव करो। खुद को प्रूव करोगे तो लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ऐसी बातों को सुनने के लिए सुनते रहो वॉक टॉक रेडियो।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर

0: भेजे के तार गए।
1: दोस्तों, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस पॉजिटिव चीज है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप कभी भी किसी भी से डरोगे भी नहीं और आप अपने काम को सही तरह से अंजाम दोगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ओवर तब होता है जब आप अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही मूल्य करने लगते हो। ये मुझे टास्क मिला है, ये मुझे काम करना है, ये बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। आपको पहले अपने आपको टटोलना पड़ेगा कि मैं कितना कर सकता हूं, तो आप काम करोगे वो कॉन्फिडेंस में लेके करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे ये तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे छोड़ो 10 बिल्डिंग पहले बना चुका हूं, फिर आप काम नहीं करोगे, फिर आप होमवर्क नहीं करोगे और फिर आप उसमें गलतियां ही गलतियां करते जाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनो। ओवर कॉन्फिडेंट इज मिस जजमेंट ऑफ द एबिलिटीज ऑफ द ओपोनेंट एज वेल एज खुद की एबिलिटी पर आप गलत आकलन करते हो तो आप कभी भी फंस जाओगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जिंदगी में मार खा जाते हैं। इसलिए कभी भी इस वर्ड को कभी भी स्वीकारा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ऑलवेज अवॉइड करो, क्योंकि हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। आप अगर सामने हो तो सामने वाला भी आपके सामने है, वो भी ताकत रखता है। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है कि कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सो बी कॉन्फिडेंट, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट।
2: Walk Talk Radio.

हेलो, माय नेम इज लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, आपको सपने आपके पूरे भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो आप चाहते हो अचीव करना वो आपको मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई तो कमी छोड़ दी है। या तो आप अपने परिवार से टूट गए हो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में, या आप अपने प्यार से छूट गए हो, या कुछ तो ऐसा है जो आपको अंदर से खुश नहीं रख रहा है। तो सबसे पहले वो वजह जाननी बहुत जरूरी है कि मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा। देखिए, एक उम्र के बाद मैं सच बताती हूँ आपको, आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होता, सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ में आप जहां भी हो, आपके पास कोई साथी नहीं हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां भी हो खुश हो और अपनी उस जोन में भी अपने आप को सेटिस्फाई फील करो। कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि ये उल जलूल चीजें और हमारा अपना हमसे खो गया, ये सब बुरा हो रहा है, सारा काम बिगड़ रहा है। और फिर पता है क्या होता है, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्पेशली हमारी एक्टिंग लाइन में तो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा से एक ही बात समझाई कि बेटा, अगर आपको गिरना आता है ना, तो आपको संभलना भी आना चाहिए। आपको अपने गिरने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी। ऐसा कभी होता है हम नीचे गिर जाए और हम उठे ही ना? नहीं होता ना। हम अपने एफर्ट्स कैसे भी करके, चाहे घुटना टूटा हो, हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम खड़े हो ही जाते हैं ना कैसे कैसे करके, और अपनी उस बोन को भी ट्रीटमेंट करा के सही करा लेते हैं। बस वैसे ही हमारी जिंदगी है। जिंदगी में भी न जाने कितने फ्रैक्चर्स होते हैं, न जाने कितने हाथ पैर टूटते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली, कितना हार्ट ब्रेक होता है, कितनी सारी चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। मैं तो एक काम करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ शायद गॉड ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर लिखा होगा। आज मुझे चाय का प्याला नहीं मिला, क्या पता गॉड ने मेरे लिए कॉफी का प्याला लिखा हो, क्या पता उससे भी कुछ बेहतर लिखा हो, नेवर नो। तो उस नेगेटिव पॉइंट को अपने ऊपर हावी होने के बजाय उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है, उससे निकलना बहुत जरूरी है, उसमें घुस नहीं जाना, उसमें खत्म नहीं हो जाना है। हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि जिंदगी में एक बार आप हार जाओ तो ऐसा मत सोचो कि कदम खत्म हो गए। जैसे शेर अपने शिकार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन अंत में जब उसको शिकार पूरा अपने टारगेट पे नजर आता है, तो वो दो कदम पीछे लेता है और फिर फुल फोर्स के साथ में अपने एम तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप नीचे गिर गए हो, आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हो, लेकिन इसे आप अपना आउटब्रेक मत समझो। दिस इज जस्ट द सेम स्टेप ऑफ लायन, बिल्कुल सेम उसी शेर की तरह जो दो कदम पीछे गया है। हम पीछे गए हैं लेकिन हमने हार नहीं मानी है, बस अगला कदम हमारा ऐसा होगा दोस्तों 1000 किलोमीटर पर आर के बराबर होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, और फिर हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे।

हेलो, मेरा नाम है लकी मेहता और आप मुझे सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर। ड्रीम बिग एंड हाउ टू अचीव देम। सपने बड़े देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें पहली बार स्कूल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, मन नहीं लगता है, हम रोते हैं, मम्मी पापा को मिस करते हैं, लेकिन फाइनली हमें आदत लग जाती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी सक्सेस को पाने के लिए आपको पहले उस सक्सेस की सीढ़ी की आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो पहली सीढ़ी पार करोगे जिसे कहते हैं सक्सेस की तरफ पहला कदम।

0: क्योंकि मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी, पर अगर हम चलते रहेंगे तो एक्सपीरियंसेस बहुत मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना ही है, मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
1: Walk down.

Once you stop learning, you start dying. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है और सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप मरना शुरू करेंगे, बिकॉज सीखना जिंदगी का प्रमाण है, या यूं कहिए कि इट्स एन एविडेंस दैट यू आर स्टिल लिविंग एंड लर्निंग. मैं हूं कहानी वाला रजत, यह है हमारा शो कहानी वाला ऑन वॉक टॉक. वो कहानियां होती हैं जिनसे आपकी जिंदगी में एक छोटा बड़ा नया पुराना कुछ सीखा, कुछ नया सीखने लायक बदलाव आ जा सकता है, अगर हम कोशिश करें कहानियों को दिल से सुनने की और दिल से जीने की. किससे कहानियों का दौर शुरू करते हैं और आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ. ये एक छोटे से गांव की कहानी है. इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे. नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो दोस्त जिसने आपके साथ स्कूल में पढ़ाई शुरू की, मे भी वो. अब जरा अपने और अपने उस दोस्त को जो शायद आपको लगता है कि आपके साथ ही शुरू हुआ था पर आगे निकल गया, उसे इमेजिन करके कहानी सुनो. तो आप दोनों ने एक ही गांव से शुरुआत की, सोचा कि शहर जाके पैसे कमाते. शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम किया और दोनों ने पैसे कमाए. फिर उन पैसों से अपना अपना बिजनेस शुरू किया. दोनों का बिजनेस चल पड़ा और 2-3 साल में दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली. आपके साथ भी हुआ ऐसा? स्कूल का वो दोस्त जिसके साथ आपने शुरुआत करी, शुरुआत में दोनों कॉलेज लाइफ में गए, पढ़ाई करी, अच्छी पढ़ाई करी और फिर एक अच्छा प्लेसमेंट हुआ. कहानी पे लौटते हैं. जब उन दोनों का बिजनेस बढ़ रहा था तो उनमें से जो पहला दोस्त था, हो सकता है कि वो आप हो, उसने सोचा कि अब तो मेरा काम ठीक चल रहा है यार, अब तो मैं हमेशा ऊपर की तरफ ही चढ़ूंगा, यानी सीढ़ियां तरक्की की चढ़ता जाऊंगा. लेकिन जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं और उसके बिजनेस में कुछ अप्स एंड डाउन आए और उसी साल उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ. जो अब तक आसमान में उड़ रहा था कि सब कुछ सही चलेगा, वो अचानक से जमीन पर आ गिरा. लेकिन गिरने के बाद भी एक चीज उसने अच्छी की, उसने सोचा कि कारण तो ढूंढे कि आखिर हुआ क्या है, जिसकी वजह से उसका बिजनेस जो था वो बाजार की जो मार पड़ी थी, जो मार्केट में चेंजेस आए थे, वो हैंडल नहीं कर पाया. तो सबसे पहले उसने अपने दूसरे दोस्त के बिजनेस की कंडीशन का पता लगाया, क्योंकि वही उसके साथ शुरू हुआ था, सेम तरह का बिजनेस, सेम मार्केट प्लेस, सेम मार्केट कंडीशंस, तो उसको भी तो लॉस हुआ होगा. लेकिन कमाल की बात थी कि उसके अप्स एंड डाउन्स जो थे वो बड़े स्मूथ निकले और उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया. वो जल्दी से उसके पास गया कारण जानने के लिए. दोस्त के पास पहुंचा, उसको काफी वेलकम किया गया, उसके आने का कारण पूछा गया. तो उसने कहा, देख दोस्त, बात इतनी सी है कि मेरा बिजनेस जो है ना वो लॉस में है. कमाल की बात है कि हम दोनों एक ही तरह के बिजनेस में काम करते हैं, हमने एक ही मार्केट कंडीशन देखी और अभी हमने देखा कि कैसे मार्केट खराब हो गया. मेरे को बहुत लॉस हुआ लेकिन जैसा मैंने सुना है तुमने काफी प्रॉफिट कमाया. तो दूसरे ने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी है कि मैं ना सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से, दूसरों की गलती से. जब मुश्किल सामने आती है तो मैं उससे लड़ना सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी कोई सिचुएशन आती है तो हैंडल कर लेता हूँ, उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ. लेकिन तभी सीखता हूँ जब वो बहुत छोटी है, उसके बड़े होने का इंतजार नहीं करता. तो मार्केट कंडीशंस जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब भी थोड़ा बहुत डगमगाई थी, मैंने तभी देख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है. मैंने वो चीज इम्प्लीमेंट की और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे मैं निकल पाया. तभी उस दोस्त को समझ आया कि यार इसके साथ ना एक ही चीज प्लस रही, ये सीखता रहा. सक्सेस इसीलिए इसे ज्यादा मिली क्योंकि इसने दूसरों की गलतियों से, अपनी गलतियों से, मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनसे सब कुछ सीखा. जब वो अपने बिजनेस पर लौटा तो उसने एक फैसला किया कि अब वो सीखना नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ हो जाए. अब इस कहानी में मान लीजिए आप है और आपका वो दोस्त है जो आपसे कुछ 4 कदम आगे है, तो क्या लगता है कि उसका कारण क्या था आगे जाने का? शायद ये कि वो शॉर्टकट बनाना सीख गया हो. ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि किसी के पास शॉर्टकट्स हैं इसलिए वो जल्दी आगे जा रहा है. लेकिन शॉर्टकट्स बनाना भी सीखना पड़ता है, नेटवर्क बनाना भी सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज बनाना भी सीखना पड़ता है. सीखना तो सब कुछ है और सबसे जरूरी है सीखते रहना. सीखते रहेंगे तो मार्केट कंडीशंस को समझेंगे, चेंजिंग मार्केट सिनेरियोस को समझेंगे, अलग अलग मार्केट्स को समझेंगे, दूसरों के बिजनेस पे नजर रखकर भी सीख सकते हैं. सीखते रहना. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें नाम, जिनका पता, जिनकी जगह कोई नहीं है. ये कुछ बेनाम सी कहानियां हैं क्योंकि इन सब कहानियों में हम खुद को ढूंढ सकते हैं. तो जरा सोचिए कि वो कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे ज्यादा सीख गया और आपके साथ चलते चलते अचानक से आपसे 2-4 कदम आगे जाके खड़ा हो गया. आज उससे सीखने का वक्त है. जरा सर्च करो उसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम समवेयर और देखो कि क्या है जो वो सीखे और आप नहीं सीखे. सदर वॉक टॉक रेडियो, ये वो जगह है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करती है. मैं हूँ कहानी वाला रजत, लौटूंगा लेकर एक और कहानी वॉक टॉक रेडियो पर. ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ.

0: Walk Talk Radio, tune in for a better life.
1: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। ये जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुम जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कहने का मतलब है, काम ऐसा करो, इतना हटके करो कि तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। किसी को कॉपी मत करो यार।
0: Walk Talk Radio.

आईआईटी पुणे में पढ़ाई के टाइम अंकित ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उनका फ्यूचर एजुकेशन लाइन में ही है। हर इंसान की तरह अंकित ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, अपनी जॉब एक अच्छे और बड़े स्कूल में इमेजिन की थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किस्मत एक ऐसे छोटे गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचा देगी जहां कुछ खास होगा नहीं। 2014 में जब अंकित ने जॉब ज्वाइन की तो स्कूल में जो देखा उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो एक ऐसी जगह से पढ़कर आए थे जहां की लाइब्रेरी में ही हजारों किताबें रखी हुई थी, और दूसरी तरफ ये स्कूल जहां किताबों के नाम पर अलमारी में गिनती की किताबें थी, और वो भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी कि कहीं फट ना जाए। अंकित का मानना था कि बच्चों के आसपास किताबें तो होनी चाहिए ताकि उनमें दुनिया की समझ और ज्ञान का दायरा बढ़े। कुछ वक्त तक ये सब देखने के बाद फाइनली अंकित ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि गांव के बच्चों को भी बड़ी जगहों की तरह बेहतर माहौल मिल सके, और इसी सोच के साथ उन्होंने स्कूल में ऑडिटोरियम बनवाया, पूरे प्रमिसेस में टाइल्स लगवाई, वॉशरूम बनवाए, खाने पीने के लिए अलग जगह बनवाई, और साथ ही साथ बच्चों को डेली विजिट करवाया जहां पर उन्हें पार्लियामेंट, म्यूजियम, लाइब्रेरी जैसी चीजें दिखाई। वो हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनको नॉलेज मिल सके। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि आज के टाइम पर अगर जो सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस, जहां बच्चों को सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि स्पेशली ट्वेल्थ के बाद में लगभग हर बच्चा आगे क्या करना है सोच करके कंफ्यूज रहता है। और इसी थॉट को लेकर उन्होंने अपने जानकार लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर लैब एंड लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया, जहां पर बच्चों को इंजीनियरिंग, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग, आर्कियोलॉजी, मार्केटिंग जैसे बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लैब में उनको देश विदेश में अपॉर्चुनिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। अपने आप में बिल्कुल अलग इस कॉन्सेप्ट को लोगों का सपोर्ट भी काफी मिल रहा है, और ऐसे ही लैब्स की जरूरत अगर जो देखा जाए तो आज देश के हर कोने में है, जहां स्टूडेंट्स को सही रास्ता चुनने में उनकी मदद की जाए। अंकित अनिल भार्गव की यह पहल वाकई काबिल तारीफ है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह है ट्रांसफॉर्मर्स और मैं हूं समर। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।

हाय, माय नेम इज समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। इसे आप सुन रहे हैं ऑन वॉक टॉक रेडियो। एक ऐसा काम जो कि हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन आता है वो है लोगों को जज करने का, लोगों के बारे में अपना एक नजरिया बना लेने का, एक माइंडसेट बना लेने का। ये होता है चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और इसमें हमारी गलती भी नहीं है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमने वही देखा है। हर एक इंसान के बोलने के तरीके से हम पहचानने की कोशिश करते हैं बेसिकली। वो पहचान कब जज करने में बदल जाती है हमको पता नहीं चलता। आपने अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, ना जाने कितने लोगों के बारे में आप क्या सोचते थे और वो क्या निकले। आप क्या सोचते थे एक्चुअली, आप उनको जिस हिसाब से जज किया था आपने, ये उस पर डिपेंड करता है। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, आगे पीछे का हमको पता नहीं होता है। क्या है कि बड़ा ही आसान है किसी के लिए अपने आज को रोशन करना जिनका कल आबाद रहा हो। तो जिनके कल आबाद थे ना, उन्होंने अपने आज को रोशन कर लिया, आप उनके लिए तालियां बजा दीजिए। जिनके कल बर्बाद थे वो अपने आज को आबाद करने में लगे हुए हैं, आने वाले कल में शायद अपने आज को ये और ज्यादा बेहतर बना पाए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार एक कपल ट्रेन से कहीं जा रहा था, उनके साथ में एक भाई साहब बैठे हुए थे। उन भाई साहब का एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 14 साल का। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वो एकदम से देख करके चिल्लाया, पापा देखिए सारे के सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, पापा देखिए पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं। पापा ने हल्के से स्माइल दिया। जो कपल बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि कैसा बच्चा है, पहली बार बैठा है क्या ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद फिर बच्चा बोला, पापा देखो बादल, पापा ये, पापा वो। पापा हल्के से स्माइल करके उसके सिर पर हाथ फेरा देते। थोड़ी देर के बाद वो कपल इरिटेट होने लगा। हल्के से जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कैसे चिल्ला रहा है, जबकि पता है कि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और फादर भी ऐसे नहीं है कि उसको टोक दें कि ये सब नहीं करना है, आराम से बैठो, पागल ऐसा लगता है। ये बात उस लड़के के फादर ने सुन ली, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बच्चे की ये हरकत कंटिन्यू रही। वो मुस्कुरा के यूं ही बच्चे के सिर पर हाथ फेराते रहे। एंड फाइनली अगला स्टेशन आया। वो आदमी अपने बच्चे को लेकर उठा और उतरने लगा। जाते जाते हल्के से पीछे मुड़ा और उस कपल से बोला, माफ कीजिएगा आपको दिक्कत हुई मेरे बच्चे की वजह से। वो क्या है कि मेरा बेटा बचपन से अंधा था, अभी कुछ दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है और आज पहली बार ये दुनिया देख रहा है, इसलिए इतना एक्साइटेड हो गया। इसके बाद में आप जरा सोच के देखिए कि वो जो कपल बैठे हुए थे उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, क्या लगा होगा कि उन्होंने बोल भी दिया, लड़के के फादर ने सुन भी लिया। एकदम शर्म से पानी पानी, अचानक से उन्होंने सॉरी भी बोला, बट वो मुस्कुरा के चले गए। और यही होता है हमारे साथ में, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। सामने वाले की सिचुएशन को हम जानते नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बट हाँ जज बहुत जल्दी करते हैं हम। किसी की लैंग्वेज से, किसी के बोलने की स्टाइल से, किसी के खराब डिक्शन से। ये सबसे ज्यादा होता है ना हमारे आसपास। किसी का गलत तलफ्फुज या यूं कहें कि गलत प्रोनंसिएशन उसकी इंटेलिजेंसी पर सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेता है। एंड स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो आजकल ये जो जजमेंटल दुनिया है, ये इंसान की इंग्लिश के बेसिस पर उसके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड करती है, जो नहीं होना चाहिए। हमको नहीं बताना कि वो इंसान कहां से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, क्या इंग्लिश स्कूल में उसका कभी आना जाना भी हुआ, क्या उसको इंग्लिश सही सिखाने वाले लोग मिले। किसी की इंग्लिश खराब है ना, करेक्ट करिए, बट उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको उस बेसिस पर जज मत करिए। क्योंकि सेम चीज जब हिंदी वाले करते हैं, जब लोगों को हिंदी नहीं पता होती है, हिंदी गलत लिखते हैं लोग अपने स्टेटस में, अपनी शायरी में, तब तो कोई जज नहीं करता। कुछ लाइंस मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले कि इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, इस सोसाइटी के जजमेंट्स इतने लेम क्यों हैं, किसी की देसी जुबान उसकी क्लास पर ब्लेम क्यों है। अगर तुम्हारी खराब हिंदी है, इट्स ओके, हो जाता है, तो औरों की खराब इंग्लिश मैटर ऑफ शेम क्यों है। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी की गलत हिंदी के लिए कोई नहीं जज करता, कोई नहीं टोकता। किसी ने फोटो कैप्शन में गलत हिंदी लिखी है, किसी ने कोई शायरी लिखी है गलत हिंदी लिखी है, कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उसकी इंटेलिजेंसी के लेवल को यहां पर क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन किसी ने गलत इंग्लिश लिखी तो वो ऐसे ब्राइट होकर के ना हमको जानबूझ के हमारे माथे पर लगती है आकर के, यूं हमारा ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अरे इसने गलत इंग्लिश लिखी है, हम जज कर लेते हैं उसको, हमें लगता है ये तो कुछ जानता ही नहीं है। हिंदी हो या इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, इनको लैंग्वेज ही रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास और क्लास के बीच का जो बैरियर, एक तरफ हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, हमको जातिवाद नहीं चाहिए, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक नए लाइन को, एक बॉर्डर को क्रिएट करते जा रहे हैं जो लोगों को बांट रहा है, जिसका नाम है मास और क्लास। किसने बनाया ये मास और क्लास, और इस गैप को और ज्यादा बढ़ा रही है ये इंग्लिश।
एक्चुअली इंग्लिश नहीं बढ़ा रही है, वो जजमेंटल दुनिया बढ़ा रही है। जज करना बहुत आसान है, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल। कोशिश करना कि ये मुश्किल काम करो आप, आसान काम तो दुनिया करती है। मैं हूं समर, शो का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स, इसे आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो पर।

0: ये है वॉक टॉक रेडियो और आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम विद गिरेंद्र भारती।
1: हेलो, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो और मैं हूँ गिरेंद्र भारती। वर्ड्स ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल के बारे में। अगर सरल शब्दों में कहो तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपके द्वारा करे हुए मात्र 20% इफर्ट्स आपको 80% तक रिजल्ट देने में सक्षम है। 1897 में विल्फ्रेड पारेटो नाम के एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए। जब वो वेल्थ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लगभग 80% यानी 80% ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। और उन्होंने देखा ये किसी भी देश काल परिस्थिति में या किसी भी कंट्री के अंदर ये ही रेशो हमेशा फॉलो होता था। मैं अब आपको इससे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, जैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी कबर्ड में रखे हुए जितने भी कपड़े हैं उसमें से 20% कपड़े आप 80% बार पहनते हो। 20% ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो 80% क्राइम्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। 20% कार चलाने वाले ऐसे लोग हैं जो 80% एक्सीडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक कि जो आपके शहर में 20% स्ट्रीट्स हैं यानी सड़कें हैं उनके ऊपर 80% ट्रैफिक रहता है। अब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूसेज अगर आपको देखना हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल भी है, आपकी जो इनकम है उसमें भी उसका मोर देन 80% आपके 20% इफर्ट से आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात को फाइंड आउट करें कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो चूजन फ्यू यानी वो थोड़ी सी चीजें, वो सिर्फ 20% चीजें जो आपकी जिंदगी में पूरा चेंज लाती हैं, यानी आपको 80% तक आपका रेवेन्यू देती हैं, आपको रिजल्ट।

0: देती हैं, आपको पैसे देती हैं, तो अगर हम उनको फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ये ऐसा ही एक चमत्कारिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे करे हुए काम को और उसकी मेहनत को, उस टाइम को बहुत हद तक कम कर देता है। आप खुद सोचिए कि आप एक काम के लिए 100% एफर्ट कर रहे हो, और अगर आपको ये पता चले कि आपको थोड़ा सा टाइम सिर्फ इस बात को सोचने पे देना है कि वो कौन सी 20% पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का जो मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है, यानी मोर देन 80% रिजल्ट देने वाला है, और आप उसके बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ उस 20% के ऊपर लगाएं, तो आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ व्हाट वी डू, यानी 20% का हम जो भी करते हैं वो हमको 80% रिजल्ट देता है, लेकिन 80% ऑफ व्हाट वी डू वो हमको सिर्फ 20% दे रहा है। हम लोग 80% ऑफ अवर टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो वैल्यू आउटकम्स के ऊपर, यानी जिनसे हमको बहुत कम या कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें करना क्या चाहिए? हमको शांत होना चाहिए, वी हैव टू काम डाउन, वी हैव टू वर्क लेस, हमें कम काम करना चाहिए, और हमें बहुत लिमिटेड नंबर की चीजों पे टारगेट करना चाहिए जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स हो, जहां पर 80-20 प्रिंसिपल हमारे लिए काम कर सके। बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार अपने रिसर्च में पाया कि उनके 87% रेवेन्यू उनको अपने 17% कस्टमर से आ रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानके कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, जहां पे भी आप काम करते हैं, वो एक स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, इट कुड बी एनी प्लेस, किसी भी जगह पर 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं, और बाकी का 20% काम करने के लिए 80% लोग बैठे हैं। है ना आश्चर्य की बात? बट इट ऑलवेज हैपेंस। हम इस प्रिंसिपल को बहुत जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं, आप उसको भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हम देखें उसके अंदर, अगर हम थोड़ा सा फाइंड आउट करें कि कौन सी ऐसी आदतें हैं हमारी जो हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती हैं, यानी हमें वो चूजन फ्यू, यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% हमें अपनी हैबिट्स ढूंढनी है, खाने के अंदर हमें वो 20% एक्सरसाइजेस ढूंढनी है जो हमको 80% रिजल्ट देती हैं, तो आप कम एक्सरसाइज में भी ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे आपके 20% कस्टमर्स आपको मोर देन 80% बिजनेस देते हैं, तो अगर आप ये फाइंड आउट कर पाए कि मेरे कौन से वो 20% कस्टमर्स हैं जो, और ये बहुत आसान है देखना, हम में से हर कोई जानता है इस बात को, तो अगर आप उनको फाइंड आउट करें, अपना टाइम निकाल कर और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को ज्यादा अच्छा बनाएं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप उतना ही काम करें जितना आप पहले कर रहे थे, तो ये 80-20 प्रिंसिपल लगाकर आप 1600% तक ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। जी हाँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट गिव्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स। मेरे को आज तक याद है जब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अप्लाई करी थी, आज से लगभग 20 साल पहले, मेरे को हंसी आती है सोचकर, उस टाइम पर मैं 95% एक्टिविटी जिस फील्ड में कर रहा था उससे मुझे सिर्फ 5% रिजल्ट्स मिल रहे थे, और बाकी के जो 95% रिजल्ट मुझे मिल रहे थे उसके लिए मैं सिर्फ 5% इफर्ट कर रहा था, एंड इट ओपेंड माई आईज। जी हाँ, मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा था, मैं इस बात को एहसास कर पाया उस समय कि कितना इम्पोर्टेंट रूल है, कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें अलग अलग जगहों पर, और जरूर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देखें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉक टॉक रेडियो, मैं हूं गिरेंद्र भारती, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।
1: एक बेटर जिंदगी के लिए सुनते रहिए वर्ड्स ऑफ विजडम गिरेंद्र भारती के साथ, सिर्फ वॉक टॉक रेडियो पर, ट्यून इन फॉर अ बेटर लाइफ।

ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख।